तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं ये करती हूँ। खुद ऐसा आदर करने में मांग आदर करना होगा। ओया ये तीन यात्रियाँ ना मांग होने के लिए पावे लाये वित होया वो होया गया ना।

0: Mandaram Rare with Taranga. Mandaram Rare, Mandaram Rare.
1: ऐसे में परीक्षा कर ईवी बाइक के कदम ना करना। वैधिविस्तर संधा विशन के आहिरिंग

चांदनी मुस्कुरा मजा आ गया। संदेवती की सीनावज आरे लोग सत्रक देना ना मांगे खाले बला कारी खामर रेट बैदुनों बे पालमु बैम मांगे हित मात कला

मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से नजर मिलाए मजा आ गया। आदरणीय थरंगा सुबह में सक मंगा लैकवेवा उब तथा सेम वेवा मंगा आदरिंग हंगिन ने इति मत लसन कतावक मता कुना मकाद दानना द मगे ये लसन नेलु मला खेदवा पासे अलवले युर कला आने में न पासे दुरिंग अन्न बै कूडु अय्यो पहले नहीं ना पाओ हरेट महान ඒත් ගන්නම බැරි වුණ පාර අනෙක් කුඩුව ගේ ඇතුළේ එල්ලුවා. ඒවා හරි ලස්සන මතක සාගරී, බණ්ඩාරවෙල සාගරී. ඒ වගේ අත්දැකීමක් මටත් තියෙනවා. අපි වහන් ඉන්න තවයිටත් ඇති. අන්තිමට ගේ මැද සාලේ නෙළුම් මල් පිපුණානේ.